कुछ भी पहले ही दे दू वार्निंग, पार्टी चले गे टिल सिक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के ना चले बेबी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो या

लगाऊंगा तेरे घर के गेट पर, ठीक 11:15 तू होना जाइयो लेट पर, टाइम वेस्ट ना करियो मेरा बेबी, मुझको काम बहुत है, एंट्री का कोई चक्कर

0: Vale.
1: गाड़ी मैं लगाऊंगा तेरे घर के गेट पर ठीक 11:15 बजे तू होना चाहिए लेट।

घूर के देखे जो कोई तुझको कान पे उसके चार लगा दूं जी भर के नाचल बेबी शैंपेन के शावर में यार तेरे का फैन मनिस्टर बैठा है जो

0: मेरा गाना चला तो गाना चला तो गाना चला तो
1: अरे आजा बुढ़िया जा तेरा गाना बजा दूं आजा बुढ़िया जा तेरा गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं बजा दूं आजा बुढ़िया जा बजा दूं आजा बुढ़िया जा बजा दूं गाना बजा दूं।

पटक पटक लौंडो के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Yeah.

देख तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने ये तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास पे हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से।

0: पीआरबीटी 01600033205 पीआरबीटी 6054017 यूटीएल 7732506
1: शब्द संगीत र स्वर माधव केसी अरेन्जर यमन खनाल उत्पादक तथा वितरक सुपा देउराली म्युजिक प्राली काठमाडौँ प्रबन्धक यमन खनाल सम्पर्क 9849

हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों सयों रेडियो हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।